0: अब ही अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है। ओके सो प्रोग्राम बिला बिरा 905-673-3337 नंबर है अपना 905-673-3337 अपना नंबर है 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातां हो रही ने थानू की सुनाइए थोड़ी हजे रिक्वेस्ट दो चार मेरे को पईयां ने ते उन्हां विचों एक अद्धी पूरी कर दी यार थानू खुश कर दी ए ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੱਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਬੱਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਕਿ

सामने होवे मेरे मैं सब भुल जावा वे हाथ फड़ के ना छड़ दी किधरे रुल जावा तेनू सांभ के।

क्या बात है, क्या चाल है सब दे? उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नू। वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी फ्राइडे जूनियर।

क्या बात है 294 वॉकर ड्राइव ते तुसी याद रखो ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड होम फर्नीचर। आज ता यार गाने बहुत आए ने, की करिए कीदा लाइए। चीमे दा भी आ, चीमे दी भी एल्बम आ गई, उतों दी अपने अर्जन दी भी एल्बम आ गई। मैं थोड़े थोड़े गाने सुने हैं चीमे भाई दी ना, इन्हां दे इहदी कलम बड़ी वधिया यार। मैं कुछ चीमे भाई दे गाने सुन रहा सी ते है बड़े की कहते हैं चकवे, बट लिरिक्स बड़े वधिया ने, क्रिएटिविटी बहुत है। सो देखते हैं थोड़े लिए लाइए एक चीमे का गाना। साढ़े जेडे थोड़े जे है ने सज्जन मित्र, मैं ही नहीं कहूँगा सीनियर, बट जेडे 70s 60s दे विच 50s दे विच 40s दे विच 30s दे विच जिन्हें जन्म होया, वो कहणगे नवी यार सानू तो अजकल के गाने समझ नहीं आते। सुनते हैं दो बोल पर

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 Fender Way 85 Montpelier Street 275 Garden Brook Trail in Brampton।
1: वेरी गुड। सो सिंपली इंडियन ते एक बार गेड़ा मार के आओ। अज दा साडा सारे दा सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है गेल फार्म वालों। गेल फार्म एंड प्रोड्यूस ते तुसी एक बार गेड़ा मार के आओ ते गेल फार्म ते थानू यार हर एक किस्म दी पनीरी मिल रही है। पहली गल तां डिक्सी ते किंग दे उत्ते लोकेटेड ने 14085 डिक्सी रोड 11 to 7 डेली खुलदे ने। थानू पनीरी सारी दी सारी मिल रही है। राम तोरी, लोकी, कद्दू, भिंडी, बैंगन सारी पनीरी ते पनीरी सिर्फ 2 $2.49 तो पनीरी है। बाकी इन्हां कोल सोयल मनूअर ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट फार्म फ्रैश देसी आंडे प्योर फार्म फ्रैश हनी यानी कि शहद ते फ्रैशली मिल कीता चक्की दा आटा होल वीट रागी बाजरा जवार फ्लावर दा। जाओ ते लोकल तुसी शॉपिंग करो एट गेल फार्म कैलडन 1085 डिक्सी रोड डिक्सी एंड किंग गेल फार्म ते तुसी जरूर गेड़ा मार के आओ ते एंजॉय करो। वधिया टॉप टॉप टॉप दी डील एट गेल फार्म।

0: 9257
1: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवामा देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे दविंदर पवार
2: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज होम इक्विटी बिजनेस लोन डेट कंसोलिडेशन रीफाइनेंस रेंट टू ओनली कॉल करो दविंदर पवार 647-988-8731
1: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
2: दविंदर पवार
1: जेकर एक बार इना तो अड़ी फाइल वेख के हाँ कह देती ता अपने भा देते हमेशा खरे उतर देहान लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन एंड ऑपरेटेड
3: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
4: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
5: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान आरआरएसपी आरईएसपी टीएफएसए कॉल करो
4: 6475294 शादी दी मूवी बनवाउन ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251
6: पाजी आज करे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाउना
4: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज
6: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट पाठ जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस
7: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ
8: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ
4: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
8: 416-717-2929
4: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ
9: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5594-647-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

0: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही है।
1: पहला नालों में कट
0: आ वेखो ऑप्शन पेलो ग्रीनो दिया चुड़िया हुई है किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99
1: ये तो और भी कट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तो हाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इसलिए असी कई आइटम दिया कीमता कट कर रहे हां। कोई फीस नहीं। और जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
2: Wholesale Club, whole lot of value.
3: Swing into golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Many Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
0: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही हैं।
1: पहला नालों में कट
0: आ वेखो ऑप्शन पेलो ग्रीनो दिया चुड़िया हुई है किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99
1: ये तो और भी कट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तो हाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इसलिए असी कई आइटम दिया कीमता कट कर रहे हां। कोई फीस नहीं। और जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca.

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है। इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।

0: ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਝੰਜਟ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਡੈਕਸ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸਪੀਡੈਕਸ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ 181 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਯੂਨਿਟ 11 ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-277-9221 416-277-9221
1: छह फुट दो इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
2: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
3: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन कोस्ट टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600
2: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बुवेडा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 taawakitchen.ca।
1: छह फुट दो इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
2: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
3: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन कोस्ट टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-451-2600 905-451-2600 905-451-2600
4: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
5: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
8: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो शो रेडियो आवाज द वॉइस जिंदाबाद जिंदाबाद। फॉर एडवर्टाइजिंग प्लीज कॉल 416-518-3200।
9: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, जिथे तुसी ट्रक वॉश, ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो। इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने, जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45, तुसी कैट दी बैटरियां विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850, सारियां रियर ड्रम and rear brake change at $750 and AC recharge is at just $180. So reach out to them, call at 905-452-9955. Inada address is 71 Stafford Drive, Brampton. They right now a hiring bhi kar rahe ne, je tanu truck mechanic da koi experience hai, you can call them. Their number is 905-452-9955.
10: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ, अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ। फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ,
11: रियल एस्टेट दी बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ।
10: फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने,
11: आज ही कॉल करो फेयरडेल दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंधेर नु
10: 905-671-2000 905-671-2000।
11: फेयरडेल नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ।
12: ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫਰਨੀਚਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮ ਸੋਫਾ, ਲੈਦਰ ਸੋਫਾ, ਸੋਫੇ, ਡਬਲ ਬੈਡ, ਮੈਟਰੈਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਰਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ सोफा मार्ट 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। ज्यादा जानकारी लिए कॉल करो परंजीत होरानू 905-803-8056 905-803-8056।
13: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट नो सीज या फ्रीज कर सकते हैं। तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAF
14: 905-908-2499 905-908-2499 और विजिट 411debt.ca। सम कंडीशंस अप्लाई।
15: और ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
16: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810, दैट इज 6476562810।
17: ड्राइव कर रहे हो? सोनो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
18: ड्राइविंग लाइसेंस?
17: नो।
18: पुलिस ऑफिसर?
17: नो नो।
18: ट्रैफिक लाइट्स?
17: नो।
18: डन।
19: डायमंड इंश्योरेंस दे अमन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-1900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
20: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
21: सिमरन बड़ी पतली हो गई है, कुछ खांदी खुंदी नहीं?
22: ले दस, काम तो जा, मैं घरे रोटियां बनावा।
21: तो टिफिन लवा ला।
22: घर का स्वाद कितों मिलता बारो?
21: मतलब तू तवा किचन दे फूड नहीं टेस्ट कीता? तवा किचन बिल्कुल घर वर्गा स्वाद। कस्टमाइज टिफिन पैकेजेस अवेलेबल, फूड क्वालिटी ते क्वांटिटी एकदम लाजवाब।
23: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बोवेडा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 kitchen.ca।
24: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नु ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
25: हां जी, हसी गाल जी, अपनी कंपनी मिसी सागा, आपां नु कैटरिंग दी लोड सीगी ते आपां तवा किचन नाल कांटेक्ट कीता। आपां नु 50 बंदे दी कैटरिंग करवाई सी ते आपने करीबन 55 तो 60 बंदे सीगे, फिर भी कैटरिंग उनां कोल मतलब बहुत ज्यादा सी, सानू कोई थोड़ नहीं आई। असी रिकमेंड करदे आ तुसी भी कैटरिंग कराओ तवा किचन तो। थैंक यू सो मच।
23: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बोवेडा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWA Kitchen.ca।
26: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ 9592200 95 900 22 00 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ।
27: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਰਿਅਲਟੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, 28 ਏਕਰ ਲੈਂਡ ਵਿਦ 2 ਰੋਡ ਫਰੰਟੇਜਸ, ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ, 407-418 ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਫਾਰ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਾਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਮ, ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਰਿਅਲਟੀ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਡ ਹਰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ, ਐਂਡ 905-671-2000।
28: ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? 11:30 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ?
29: ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
28: ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ?
29: ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਡੋਰ ਤੋਂ ਬੜੋ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੇਵਿੰਗ 100 ਡੋਲਰ ਦੀ 905-458-1331 ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ 905-458-1300।
30: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
31: ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਅ ਆਫਿਸ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ 1 ਰੂਫ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸੋਲਿਸਟਰ ਐਂਡ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ ਚਿੰਕਿਊਜ਼ੀ ਐਂਡ ਬਵੇਡ। ਫਾਰ ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਲ 905-497-1211, 905-497-1211।
0: टैक्स का सीजन आ चुका है, पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे होनी है, केड़े-केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सेट किते हन, लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहिदी है। पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साजा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीआं दो लोकेशनस तों नवीआं फाइल्स इत्थे लै रहे ने, उत्थे तुहानूं सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई। टैक्स दीआं सर्विसिस लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन।
1: हाँ वीर रणवीर, किधर फाइला चक्की फिरदा सवेरे सवेरे? ओ भाजी मॉर्गेज लई महीना हो गया, एक डॉक्टर तो दूजे डॉक्टर टक्कर कटदा है यार, आ किन्ने सवाल जवाब करदे ने मॉर्गेज वाले।
2: देख भाई, जे तू लेना मॉर्गेज या लोन
3: ते तेरा काम 24 घंटे च करनगे मिस्टर संधू।
1: अच्छा जी,
4: आहो जी, नीड प्राइवेट मॉर्गेज एंड लोन्स, देन कॉल मिस्टर संधू एट 905-671-2000। नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। नंबर रखो याद, 905-671-2000, 905-671-2000। Mr. Sandhu.
0: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5-star ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401-416-816-8484-1। F-154 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4141-3024-1।
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
5: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
6: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
7: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
8: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: Asi karde ha fikar, tusi raho befikar, tusi jiyo befikar.
3: Ki gal bhai ji, enne befikar ta tusi mainu kade nazar nahi aaye. Raaz ki hai. Befikar hon da eh raaz mainu ditta hai Jaswinder Kaur Taggar di insurance policies ne. Sadi life insurance, truck drivers layi disability te critical illness de change plans. Sadi parents layi super visa insurance te bachya layi RESP. Tusi vi raho befikar te call karo Jaswinder Kaur Taggar nu 6477652345 647-765-2340
4: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647-702-23।
5: लाइसेंस नंबर 10394।

0: जे तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: आप पंजाबी आ गए
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
3: Hi, this is Harpreet Singh from

0: 7073 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।
0: लो जी अपा गीत मेरा एक आया सी दिमाग जी गीत सरदूल जी दा ओ सी फुलां दी कच्ची व्यापार ने कंडियां दे पात सानू तोलना। लावां गीत हो जे ना लावां की ख्याल है तुहाडा? थोड़ा मैनू दस दिओ गीत थोड़ा सैड जिहा और जां फिर कोई मैं होर हसन खेडन वाला गीत ही ला देवां। मैनूं थोड़ा दस दिओ प्लीज़। गाने बड़े कमाल दे आ खत टुकड़े टुकड़े कर देने नहीं मैं साड़ देना तस्वीरां नूं जद तू ही नहीं तो फिर की करना इहो जिहियां मुहब्बत दियां जगीरां नूं। है ये मुहब्बत का वर्ड मैं ही लाता विच हरजीत सिंह जी तुसीं कई वारी शेरो शायरी दे च माड़ी मोटे ला देने हुंदे आ ते इह गीत जिहड़े आ इह थोड़े सैड वाले गीत आ आई मीन हैगे तां रोमांटिक गीत ही है पर मैनू दसो मैं गीत ओ लावा जरा लावा। फुलां दी कच्ची व्यापार ने कंडियां दे पात सानू तोलना कल्ले विक रहण दे विलकदे इह गीत बड़ा प्यारा गीत है। एक गीत जिहड़ा मैं पहले दूजा दस्सिया खत टुकड़े टुकड़े कर देने नहीं मैं साड़ देना तस्वीरां नूं जद तू ही नहीं तो फिर मैं की करना सरदारनीए ए मुहब्बत दियां जगीरां नूं। वाह भी वाह। लो जी दसो फिर की लाई आप जहाँ फिर मेरे को गीत एक होर तैयार पे कहो आप ला दें जिम्मे थोड़ा हुक्म 905-673-3337 A to Z किचन कैबिनेट वालों भी असं प्रोमो स्पॉन्सर कर रहे हैं। A to Z किचन कैबिनेट वाले कहेंदे लक्की भाजी कहेंदे कहेंदे दो साढ़े फैक्ट्रियां चल दी हैं एक फैक्ट्री साड़ी ब्रैम्पटन दे विच दूजी फैक्ट्री साड़ी नैगरा फॉल दे विच ते सारे कवर कर लेंदे आ कोई किधरों ब्रैम्पटन वाले इधरों ईस्ट वे साइड डाउनटाउन टोरंटो इटोबिको नॉर्थ यॉर्क इधर कवर करते हैं ते जिहड़े इधर ओकविल हैमिल्टन चल जाओ इधर होर चल जाओ अगे थोड़ा जिहा सेंट कैथरीन चल जाओ उत्थे सारे जी नैगरा फॉल वाली फैक्ट्री कवर करती है। जे तुसी भी घर दी किचन कैबिनेट अपनियां वधिया शीशे वाली तैयार करवाउणियां ते नंबर हाजर लक्की भाजी दा कमाल दी जिथे किचन कैबिनेट तैयार करदे आ नवे नवे डिजाइन हर रोज ही तैयार करदे आ क्योंकि ये आप कहिंदे ना डिजाइनर बंदे आ ये आप कारपेंटर बंदे आ ये आप मकैनिक बंदे आ ये आप फोरमैन बंदे आ आप ये सुपरवाइजर बंदे आ आप ये बॉस बंदे आ ते इस करके नवे नवे डिजाइन तैयार करदे आ A to Z किचन कैबिनेट वाली कंपनी दे मालक लक्की भाजी 416-720-7073 इस नंबर तुसीं कॉल जरूर करो जे तुसीं अपनियां वधिया किचन कैबिनेट्स तैयार करवाउणियां। ते वाकई सही गल आ घर दियां किचन कैबिनेट सोहणियां बणियां होणा ना ते फिर बीबियां राणियां वी वधिया गोल गोल फुलके पकदी है ते जे किचन कैबिनेट खास कर जदों कि घर गैसट आ जावे ना ते किचन कैबिनेट ना वधिया होण ते फिर इहनां बाद च पंगा जरूर पैंदा ਪੰਗਾ ਜੂ ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਲਵਾ ਦਿਓ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਕੋ ਲਵਾ ਦਿਓ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਬਣਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਡ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੰਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੁਆਰਾ 416-720-7073 ਦੇ ਕੋਕ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਕਾਲਸ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈ 6474481000 ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਪਾ ਲਓ ਗੂਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਊ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕੋ ਨੰਬਰ 6474481000 647-448-1000 ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਈ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰੂ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਧੀਆ ਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਜਰਾ ਫੁਲਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ

0: चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
2: 9053580864 ढाबा ऑन द फॉल्स।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़ा अपना साहिब सिंह सहजरा, ऑटो होम एंड लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर। फॉर ऑटो होम या कमर्शियल इंश्योरेंस की कोटली असी डील करते हैं मोर दैन 15 इंश्योरेंस कंपनीज ना, तो अज ही कॉल करो 647-241-1309
4: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रामटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: www.vikilpro.ca. मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिसते वो सचमुच ही हकदार हैं। थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ। SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984।
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
3: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
4: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.